तामा पीतल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852510504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

0: अब मैं आपको सुनाता हूँ कि हमारा इस जीवन में कितना भला हो गया है, क्योंकि हम जीवे। क्या बात है कि सहजो नौबत श्वास की बाजे है दिन रैन, और मूरख सोए है महा, मूरख सोए है महा। क्या करता है मूरख? सोता रहता है।
1: आप जानकारी का लागी premrawat.com अथवा 01590-1765 र 98-43-1650-11 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
2: जैसे समुद्र में जब तूफान आता है और कोई गिर गया जहाज से, अब गिरते हैं लोग, बड़े बड़े जहाजों से लोग गिरते हैं जब तूफान आता है। कहाँ जाएं, क्या देखें, क्या करें, किस चीज को पकड़ें? तो जिंदगी के अंदर भी तूफान आएंगे। अब आने चाहिए या नहीं आने चाहिए इसलिए बात अलग है, पर आएंगे। और तैयारी क्या करनी है, ये निर्णय लेना है अपने जीवन में कि क्या हम उस सुख और शांति को, जो भगवान की शांति, अगर यहां आकर के भी वो नहीं कर पाए हैं, जहां हमको समय है, शरीर है, जिससे हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर यहां आकर के भी वो नहीं कर पाए तो फिर कहां देखेंगे, कहां मिलेगा वो, कैसे पहचानेंगे उसको, कैसे जानेंगे उसको, कैसे आनंद उस चीज का ले पाएंगे।

0: तामा, पीतल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852510504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।
1: हेलो
2: हेलो क्रिस्पी, सुन न, घरमा चाहिने खाद्यान्नको सामान सकिएको छ, यी सम्पूर्ण सामान किन्न कता जाने होला?
3: किन यता उता गर्नु पर्यो? पोखरा 7 मासबारमा रहेको पीएसटी टेरसमा जाऊ न, त्यहाँ त गुणस्तरीय सामान सस्तो र सुफत मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: सम्पर्क पीएसटी ट्रेडर्स पोखरा 7 मासबार श्रीकृष्ण माविदेखि बुलाउँदी लेक साइड जाने बाटोको बीचमा प्रोप्राइटर टेकराज पौडेल मोबाइल नम्बर 9860309362 9560334 खाद्यान्नका सम्पूर्ण सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ, साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ।

स्टडी एब्रोड जुनसुक विषय में उच्च शिक्षा का लगी अस्ट्रेलिया यूएसए यूके कैनेडा न्यूजीलैंड हजुर को गंतव्य विश्वासिलो र भरपर्दो शैक्षिक परामर्श केन्द्र बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी पोखरा सम्पर्क बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी पोखरा चार सिद्धार्थ चोक फोन नम्बर 061-570-736 98-560-2325 98-086-35-480

तामा पितो स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुदरा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 5 0 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050508 97055557 मनसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड
1: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
2: वेस्ट सल्फर ल्यायो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
1: अब सब को लगी वेब सर्फर भर पर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरुभन्दा फरक सबैभन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस
3: कन्ट्याक्ट 0615530050 0615589848
1: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np
4: यामा पानी प्यास लाग्यो यही घैटाको पानी खाइदिउँ कि क्या हो
5: नाइ बाबु वर्षाको समय छ पानी उमालेर वा फिल्टर गरेर मात्र पिउनु पर्छ नत्र बिरामी होइएला
6: स्वच्छ खाने पानी र सफा वातावरण स्वस्थ जीवनको आधार हैजा झाडा पखाला र डेंगू जस्ता रोगबाट बच्न व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाईमा ध्यान दिऊ घर वरपर पानी जम्न नदिऊ स्वस्थ बनाओ
7: अनुरोधक गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरा

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852110504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ। यदि तपाई वैदेशिक रोजगारी में जानी मनसाय बनाई रहनु भएको छ भने नागढुंगा पोखरा में रहेको नेशनल एक्सपोर्ट मेनपावर कंसल्टेन्सीलाई सम्झनुहोस्। दुबई कतार साउदी मलेसिया सहित रोमानिया लगायत का यूरोपियन राष्ट्र का विभिन्न कंपनी में वैदेशिक रोजगारी को सुवर्ण अवसर कुक किचन हेल्पर वेटर सिक्युरिटी गार्ड फैक्ट्री वर्कर डेलीवरी बॉय ड्राइवर हाउसकीपिंग हेल्पर क्लीनर लगायत का क्षेत्र में वैदेशिक रोजगार जान चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्। खाना बस्न को सुविधा सहित मासिक तलब न्यूनतम 40,000 देखि 1,00,000 सम्म सम्पर्क नेशनल एक्सपोर्ट मेनपावर कंसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड नागढुंगा पोखरा कास्की फोन नम्बर 0161553071 9867812334 97050771123 व्हाट्सएप नम्बर 9801177123।

तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान को होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 5-0 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त।

0: ही भाई था सही ला थप्पा डालियो जाल बाप खाली काप थी ना बक्के खालियो पत्तो इल्ली गावले काई डोली हो पत्तो इल्ली गावले काई लोली हो मत काट वो आल अधिकारी तो पे आरोही ले उठते उल्टा
1: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ट्ज़
2: सुनना मन लाइफ।

0: सफलता 103.4 मेगाहर्ट्ज
1: सुन्न मन लायो।
2: मेलो सारा पानी न पर बेलाई मारो पैसा केर जाना पाइए कर लव केती हो गाव रोपना शुरू करे है पहले तो तिमी रुपने आओ छिटो छिटो गाव का

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।